बरकत न जापनी हरता के भरावार आप कराए साक्षी फिर आप कराए बार एक ना गली जंजीरियां एक पिंजरे बसियार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नान करना जिनकी या।

0: रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
1: आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप

देव सब मुन इंद्र महाशिव जोग करी फोन भेद बिरंच विचार रहो हर जापना छड़ो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गोर ज्योत अर्जुन माहे तरी डगमग शाडरे मन भौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाइये लीनो हाथ सिंधौरा सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छड़े खेत लिखे कत है न छूटिए खिन खिन भूलन हार बखसन हार बखस ले नानक पार उतार सुख टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो वै सिफ तख सम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइए सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइए सब ना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा जतन करे मानुख डहकावे ओह अंतर जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे पेख करे निर्वाण जतन करे मानुख डहकावे ओह अंतर जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे पेख करे निर्वाण जानत दूर तमहे प्रभ नेरे

जब लग तुटे नाही मन परमा, तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई। जब

तब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा, जतन करै मानुख डहकावै, ओहो अंतर जामी जानै, पाप करे कर मुकर पावै, भेख करै निर्वाणै।

बंदी अंदर विरले बंदे बंदी अंदर विरले बंदे जोध के जतैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मटैया नाथ तीन लोक गाई है काहू के तनैया है न मैया जा को पहिया को छौनियों के छैया छोड़ का सुप्रीत लाई है साधना सदैया तुल तान के तो जैया तुम तार के तरैया ध्यान ताकू

हेरा भेसस हे करुणानिद मेरी अबै बिनती सुन ली और न मांगत हो तुम ते कच्चा तो चित मैं सोई थी वस्त्र सो अत हिरण पी जूझ मिलो तो साच पति संत सहाय सदा जगमा कृपा कर श्याम है बर जी कृपा कर श्याम है बर जी कृपा कर श्याम है बर जी जय सतगुरु।

ज्योति जोत मिलाए कायागढ़ सोया रा कायागढ़ सोया मेरे प्रभु या। क्यों सास विरास विसारी है अदृष्ट अगोचर।

0: तारे 100 करोड़ राय उभय करता रण त्याग भागे सब त्रास भागे भाई जीत मेरी पाताल केरी तनु तार भर के सब सुर हर के रण जीत आए
1: गीत गाए
0: तनु तार भर के सब सुर हर के

नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: पौड़ी वटी वडे अपार तेरा मर्तबा, रंग परांगा ने एक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सबके जान ला, सब किश तेरे बस तेरा करफला, तेरे घर आनंद वधाई तुद घर, माण महता ते अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दे सहजत कथा, नानक दा सुंदा स्तुदिया गए बिन बता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाए दाया खेले

दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया, पाएं गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यों। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यों। सिमृत शास्त्र वेद सब है बहुपीद कहें हम एक न जान्यों। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यों। दोहरा सगल द्वार को शाड कै कहो तुहार द्वार। बाहीं गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को शाड कै

उत्तरे सगल विसूरे दुख रोग संतापि उत्तरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र

सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो। तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवां। तेरा कीता जातो नाही मैं ना जोग कीतो। आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई। सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा। तन मन थीवै हरिया तरस पया मेहरामत होई। सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा।

अर्जन हर गोविंद नौ सिमराउ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाए। दसां पातशाहियां दी जोत।

जग और न जाहे महातम में अवतार उजागर आन किया तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिने अमृत नाम पिया एह पद्धत ते मत चुकह रे मन भेद विभेद न जान बिया परतच हृदय गुर अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लिया तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद्ध विचार दे अनित न नित रहे जस नाव चढ़े पव सागर तारे धीरज धाम बनाए पव चढ़े पव सागर तारे धीरज धाम

कतुरतार बहार सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी दूर अरसो कुरसो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सा सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया

जा का हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा। जाका हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरणी पावन नाम त्यावन, सहज समावन संग। जन के चरण वसह मेरहिय संग, पुनीता देही जन।

हम अवगुण पर एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयों गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख होवै सिफ तख सम्बंधी, नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी सजन सचा पातशाह, सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही, सबनांद सजन सचा पातशाह, सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही, सबनांद वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, तनासरी महला पंजवा, जाको हर रंग लागो इस जुग में है, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल बस ताके, जाका सतगुर पूरा। जा

सो कही अत है सूरा आत्म जिन सगल वसता कै जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइए आत्म रंग सरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग जन के चरण बसह मेरे ही अर संग पुनीता देही जन की तूर देह कृपा निद नानक कै सुख एही जन के चरण बसह मेरे ही अर संग पुनीता देही।

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्ब सुख हर नाम बड़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दया खिले सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर, करमी अपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, हर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाय, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दो दाई दाया, खेल सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया।

ओंकार सतनाम करता पुरुख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत हजूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले की लिखे टुंडे असरा जय की तुनी श्लोक।

अपने आप साजो अपन रचो नाओ दुई कुदरत साजिए करे आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो इस सबसे दिल।

0: सगल्या भौलख्या सलेख नानक निरभव निरंकार सचेक महला पहला।
1: नानक निरभव निरंकार होके तेरा अमरवाल केतियां कन कहानियां।

0: चखना चाक महला पहला।
1: लिख लिख पड़े आते ता करया बहुत तीर्थ पवे आते तो लव्या बहुत पेक किया दही दुख दिया सहवे जिया अपना किया। अन्न न खाया साथ गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस।

0: कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप पार, कूड़ मिया, कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरया करतार। किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ मिठा, कूड़ माख्यो, कूड़ो बेपूर, नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
1: सचता पर जाने जारी दे सच्चा होए, कूड़ की माल उतरे तन करे हच्छा तो होए। सचता पर जाने जा सच तरे प्यार, नाउ सुन मर रसे ता पाए मुख द्वार। सचता पर जाने जा जुगत जाने जियो, तरत काया साध के विच देख करता बियो। सच ता पर जाने जा सिख सची ले, दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे।

0: सिफत सवाल योजन कीते सो पार पया, कहुना न करते किया बाता, जो कुछ करना सोकर रहया महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं बे शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं।

0: तित नाम लाग ते तीस ते आवे जती तपीसर मन वस्या सोई नाम सिमर गंगे पतामे चरण चित अमृत रसिया। तित नाम गुरु गंभीर गारु मत सतकर संगत उद्दरिया सोई नाम अछल भगते पवतारण अमरदास गुर को फुरिया। नाम कित संसार किरण रव सुरतर साखे उत्तर दखन पुब देश पश्चिम जस पाखे जन्म तय सके अथ जित नाम हर हृदय निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन असासे पलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ कर त्याए सोई नाम भगत पव जल हरन गुर अमरदास तै पायो।
1: नाम तिहावे देव तेतीस और साधक सिद्ध नार नाम खंड ब्रह्मंड तारे जय नाम समाद्यो हर सोग समकर सहारे। नाम श्रोमण सर्वमय भक्त रहे लिवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार। नाम श्रोमण सर्वमय भगत रहे लिवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार।
2: सत सूरो शील बलवंत सत पाए संगत सगण गुरु मत निर्वैर लीना जिस धीरे तुरत तुजा सेत बैकुंठ बीना पर से संत प्यार जेह करतारे संजोग सतगुरु से सुख पायो अमर गुर की तो जोग। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सतगुरु सेवियो जिस पसैगत गम जानी कुल समूह समुद्र पायो नाम निवास सक्यथ जन्म का लुचर गुर परस्यो अमर प्रगास। सक्यथ जन्म का लुचर गुर परस्यो अमर प्रगास।
3: बारिज कर दाहिने सिद्ध सन मुख मुख जोवे रिद बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोह हृदय बसे अकहियो सोए रास्ते नहीं जातो मुखो भगत उच्चर अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म काल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायो।
0: चरण तपर सिक्के हथ चरण गुर अमर पवलरा हथ तपर सिक्के हथ हथ लगे गुर अमर पै जी तपर सिक्के हथ जी गुर अमर पनीजै नैन तपर सिक्के हथ नैन गुर अमर पखीजै सरवन तपर सिक्के हथ सरवन गुर अमर सुनीजै सिक्के हथ सोहियो जित ही बसा गुर अमरदास निज जगत पित सिक्यथ सो सिर जालप भर जो सिर निवै गुर अमर नित।

0: राखो सरनाई।
1: सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जनम जनम दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहा दैसाहो, जिस पास बैठिया सोहिया सबना देश। सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहा दैसाहो, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। सत

दान बाबेक दान विसाह दान प्रुसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगिया टल

जे मोहा का कर्म है कर्म है पितरी दे, अगे बस नाणी है पितरी चोर करे, वड़ी है दलाल के मुस्फिये करे, नानक गैसू मिले जे खट्टे काले।

0: महला पहला जे मोहका कर्म है कर्म है पितरी दे जेकर सुतक मनी है सब ते सुतक होए।
1: श्लोक महला पहला
0: जेकर सुतक मनी है सब

0: जिथरे आस कुए सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवेरे सुए नानक सूतक क्यों न उतरे ज्ञान उतारे तुहे महला पहला
1: मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूर अखी सूतक वेखना परत्र परतन रूप